0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
0: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
0: तो सुनते रहिए सुनो।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अब हम चलें

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: बचपन हर गम से बेगाना होता है, गीत गाता चल का ये खूबसूरत गाना वाकई बहुत कुछ कहता है ये गाना। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और सच बात तो ये है कि बचपन, बच्चे, बच्चों के साथ हम खेलना चाहते हैं, और जब हम कोई बड़े व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ना कि इसका बचपना अभी गया नहीं है, कोई नहीं चाहता कि किसी का कोई बचपना चला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान खुश होता है और खुश रखने की कोशिश करता है अपने बचपने के ज़रिए। और जब हम बच्चों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को देख के हमें खुशी मिलती है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और इस आंदोलन की एक शुरुआत जो रही है 1980 में, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं सहना प्रियदर्शनी जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं दिल्ली ऑफिस से, साथ ही साथ हैं अजीत सिंह रावत जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, आप भी दिल्ली से हैं। तो सहना जी, आपका सुनुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: अजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद गगन जी।
0: कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर पाया, वैसे हमने बहुत देखा है इनको, सुना है। एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध आप पक्षधर रहे हैं, और ये हमेशा बच्चों के हक की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। तो सबसे पहले सहना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो संस्था है आपकी, किस तरीके से काम करती है?
1: तो ये फाउंडेशन जो है, हम लोग जो है बाल अधिकार को लेकर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। बाल अधिकार का सुनिश्चित होना जो है एक कैलाश सत्यार्थी जी का एक विजन रहा है हमेशा, कि अगर दुनिया या फिर आगे का फ्यूचर तभी वो सेफ है जब एक बच्चा जो है वो सेफ होगा, क्योंकि वही जो है आगे यूथ बनेगा और आगे वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो उसी को लेते हुए कैलाश जी का ये विजन रहा है और उसी को हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी पर काम करता है, जिसको लिए हमारा अलग अलग तरीके के काम है बच्चों के साथ, जिसमें एक है हमारा बाल मित्र ग्राम जो कि शुरुआत हुई थी सुमेधा जी की तरफ से, जो कि उनकी वाइफ हैं सर की, उन्होंने जो है ये शुरू किया था। हमारा सबसे पहले राजस्थान से ये शुरू किया है, उसी तरीके से अभी हमारे बीच जो है हम रूरल जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण हो सकता है उस इलाकों में हम लोगों ने काम शुरू किया है वहाँ पे, जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारे अलग अलग जगह पे ये काम है। इसी तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ हम लोगों का काम रहा है, जहाँ पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं एक बच्चे को लेकर, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारा लीगल एड सेशंस हैं, लीगल एड डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ में हमारे विक्टिम असिस्टेंस का डिपार्टमेंट है और साथ में कैंपेन्स का। तो एक ओवरऑल तरीके से हम एक कम्युनिटी को एक अवेयरनेस के थ्रू जो है और साथ ही साथ में इंटरवेंशन के थ्रू जो है हम काम करते हैं, ताकि हर बच्चा जो है सुरक्षित रहे। और इसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बाल अधिकार के साथ साथ चाइल्ड लीडरशिप की बात है, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है एक बच्चा अगर बचपन से जानने और उसको फॉलो करने लगे तो वो आगे जाके एक अच्छा सिटीज़न भी बन सकता है और वो जागरूक रहेगा। तो हमारे बाल मित्र ग्राम में जो है बाल पंचायत बनते हैं, और इसी तरीके से हमारे बाकी अदर और प्रोग्राम से जहाँ पे बाल पंचायत बनते हैं, बच्चे जहाँ पे खुद नेतृत्व लेते हैं कि वो अपने इश्यूज और अपने जो भी इश्यूज है उसको लेकर आए।
0: कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आपकी संस्था करती है, लोगों के बीच में जाती है, बच्चों के हक की बातें होती हैं, और जिसमें कि आपने यहाँ जिक्र किया कि ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक कैंपेन आप लोग चलाते हैं, कानून की जानकारी भी उनको दी जाती है, बाल पंचायत आप लोग एक बनाकर चलते हैं जिसमें कि बच्चों को ही किसी को लीडर बनाया जाता है और उनके साथ बच्चे ही जुड़े हुए होते हैं। आपने बातों बातों में मुझे बताया कि सहना की जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में बच्चों का शोषण हो रहा है, तो क्या कोई आपकी एक टीम है जो रिसर्च करती है कि हमें वहाँ जाना है, हमें पता चला है कि वहाँ बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है? अजीत, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि संगठन अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करता है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ ग्रास रूट इंटरवेंशन, और जब हमें ऐसी कोई लीड मिलती है या हम कोई ऐसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ हो सकता है कि बच्चे श्रम में लिप्त हो, तो उसके लिए हमारी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो उसका एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू। तो जितने भी ये इंटरवेंशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस विभाग हो गया, डीएम हो गया, उनके साथ मिलके रेड एंड रेस्क्यू का भी हम इंटरवेंशंस करते हैं शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन सेटअप में, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
0: जी जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई कि आपकी जो संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये आप हमें बहुत डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही साथ जब मेरी सहना जी से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि बाल मित्र ग्राम की भी शुरुआत, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ और सवाल है, हम इसके बारे में आपसे जानेंगे जरूर, मगर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
4: गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। एक ऐसा नाम जो कि भारत में तो जाना ही जाता है, विश्व पटल पर भी जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि हर घर घर में उनका नाम है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। आप हैं कैलाश सत्यार्थी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी संस्था के बारे में बातें हो रही हैं और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। उनके इस क्षेत्र से आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सहना प्रियदर्शनी और अजीत सिंह रावत। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है,
1: धन्यवाद।
0: अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो बात करते हैं कि कुछ चैलेंजेस आते होंगे। जाहिर सी बात है कि किसी काम को आप धरातल पर लेकर जा रहे हैं, आसानी से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी दुश्वारियां आपके सामने आती हैं, उन दुश्वारियों का किस तरीके से आप लोग सामना करते हैं। सहना प्लीज आप बताएं।
2: जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काम या फिर सोसाइटी में अगर किसी भी बदलाव की बात करें तो एक स्लो प्रोसेस और साथ ही साथ में उसके अपने ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसी तरीके से बच्चों के साथ शोषण हो गया हो, ये काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और होता आ रहा है, तो उसको चैलेंज जब करते हैं, जैसे कि हम, मैंने इससे पहले बताया था कि हमारा एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू का, जिसमें हम लोग बच्चों को अगर वो चाइल्ड लेबर में लिप्त हो तो उनको हम जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं उन जगहों को, और उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा कर जो है हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे भी, जब भी ये रेड एंड रेस्क्यू हम लोग करने का कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी, वहाँ पे इतनी सारी चैलेंजेस आती है कि वहाँ का लोकल कम्युनिटी, अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि वो हाथ में पत्थर हो गया या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें चोट पहुँचा सके, तो ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है। उस दौरान उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे अदर प्रोग्राम है बाल मित्र ग्राम, जहाँ पे हमारा कोर है कि हम बच्चों को जो है एक माइका माइनिंग एरिया है झारखंड में, वहाँ पे हम काम करते हैं। बच्चे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे जगह होते हैं जहाँ से माइका निकाला जाता है, बच्चों को उसमें धकेला जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा कि वो धस गया हो माइका माइन और बच्चे की जो है जान वहाँ पे चली गई हो। तो इन सब के अगेंस्ट जो है कम्युनिटी कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती है कि वो हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस दौरान जो है हम रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, रेगुलर रैपो बिल्डिंग और स्टेक होल्डर ग्रुप्स जो है, जो कि वहाँ पे जो कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ के हम इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए या ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, टीचर्स, इन सबको हम साथ में रखते हैं ताकि हम एक होलिस्टिक, एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज कर पाएं जहाँ पे बच्चे को जो है सुरक्षित रख पाए। उसी तरीके से जब हम रेड एंड रेस्क्यू की बात करें तो हमारा लोकल गवर्नेंस जो है, पुलिस हो गई या SDM हो गए, उनको हम हमेशा साथ में रखते हैं।
0: जी, तो साना अभी आपने बात की कि ट्रेनिंग सेशन की आप बात कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब आप बच्चे को लेकर जाते हैं, काउंसलिंग आप लोग करते हैं, तो यहाँ जो काउंसलिंग की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो क्या हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या उसके माता पिता से भी हम लोग बात कर रहे होते हैं?
2: हमारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो, और क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी भी साथ हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं दोनों तरीके से। हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन जो मैं कह रही थी, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अन्य हमारे जो वर्क से लोग आते हैं, जैसे वो पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गए वर्कर्स, या फिर और ज़्यादा अधिक हमारे जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करती है ताकि वो लोग सशक्त हो पाए या ऐसे सिचुएशन आए तो वो उस चीज़ में हैंडल कर पाए और बच्चों के लिए जो है द बेस्ट चॉइस जो है वो उस तब ले सकते।
0: जी जी, अजीत, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आप बच्चों को ले जाते हैं, कभी कभी बच्चा ये चाहता है कि नहीं, मुझे मेरे घर ही जाना है, मुझे मेरे को काम ही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना नहीं है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कमा कर लेकर आए, क्योंकि वही एक कमाई का जरिया है। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी होती हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में मुझे बताएं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल करते हैं।
1: ये बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर आपको दो तरीके से दूंगा। पहला तो ये है कि जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में टेम्परेरी, मतलब जैसे रेस्क्यू किया है और वो बच्चा किसी और राज्य का है, तो टेम्परेरी बेसिस में जो होम्स होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं उनमें रखा जाता है। उस दौरान बच्चे की एक काउंसलिंग सेशन किया जाता है जहाँ उसकी साइकोलॉजिकल उसको जाना जाता है और उसको भी तैयार किया जाता है कि वो मेन स्ट्रीम हो पाए, अपने घर जाए और शिक्षा मतलब इनरोल हो स्कूल में, अपनी शिक्षा पूरी करे। और इस स्थिति में जब पेरेंट्स से मिला जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, और अगर ये लगता है कि पेरेंट्स उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि बच्चा उस वल्नरेबल सिचुएशन में है कि वो दोबारा चाइल्ड लेबर में जा सकता है, तो उस स्थिति में कुछ लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं जहाँ बच्चा अप टू 17 एज तक रहता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है और साथ में जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास आमदनी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा में हम 10 कम्युनिटी और 10 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं HCL फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ हम जब बात करते हैं एक ग्रास रूट इंटरवेंशन की, तो ना हम सिर्फ बच्चों को फोकस करके हम अपना इंटरवेंशन करते हैं, बट उनके सराउंडिंग में जितने भी उनका सोशल प्राइमरी सर्कल है जिसमें उनके माता पिता आते हैं, उनके पड़ोसी आते हैं, आपके स्कूल के अध्यापक आते हैं, और साथ ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जैसे CWC, JJB, इन सबको हम इंगेज करते हैं। तो एक तरफ तो हम बच्चे को ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं, और साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनसे हम माता पिता को कनेक्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार का अवसर भी मिले, और उन सिक्योरिटी स्कीम के तहत अगर कोई विडो है तो उनको विडो पेंशन मिलना शुरू हो जाए।
0: क्या बात है,
1: तो इसके साथ ही हम सस्टेनेबल इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि बच्चा 18 साल तक अपना एजुकेशन पूरा करे और वो किसी भी तरह के लेबर में इन्वॉल्व ना हो।
0: जिस उद्देश्य के साथ आप लोग चल रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है।
1: धन्यवाद।
0: सो लिस्टनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक खूबसूरत शेर है, खूबसूरत लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। आज ये जो कारवां है वाकई बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा वट वृक्ष हो चुका है ये फाउंडेशन कि जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इनकी शाखाओं पर बैठकर बचपन झूल रहा है, इनकी शाखाओं पर पकड़कर बचपन आगे बढ़ रहा है। यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन का जो एक मुहिम थी वो सच होता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं और सिर्फ लोग, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, अजीत यहाँ पर और सहना भी जुड़ी हुई हैं, कि लोग कतराते भी हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, सराहना हो रही है, गवर्नमेंट आपको अवार्ड से सम्मानित कर रही है, आपके ऊपर फिल्में बन रही हैं। मैं फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक झलकी फिल्म मैंने आप लोगों की देखी थी जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन पर आधारित थी कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं और जहां बाल मजदूरी हो रही है वहां से बच्चों का रेस्क्यू करना, उनको लोगों की धमकी भी मिलना, चोटें भी आई हैं। तो वाकई मैं आपके काम को सराहता हूं, सैल्यूट करता हूं। और जाते जाते बस मैं ये थोड़ा यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, कोई वॉलंटियर ही आपको अपनी सेवा देना चाहे, तो सहना आप मुझे बताएं किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं।
1: जी, जैसे कि अभी तक जो मैंने कहा कि हमारा मुहिम जो है या फिर हमारा ये पूरी कोशिश जो है, ये हम अकेले नहीं हैं। हम, जैसे आपने भी कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरीके के काम हैं जिसको हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ साथ में जुड़ के हमारे जो बाल मित्र ग्राम हो गया, या फिर हमारा जो काम अभी नोएडा में है हमारा, या फिर हमारे दिल्ली क्षेत्र में जो काम है, उन सब में वो आके अपनी तरफ से अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को जो है सशक्त कर सकते हैं उनके राइट्स के ऊपर। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जिसमें वो आके ज़रूर कर सकते हैं उसमें।
0: जी अजीत, आप मुझे बताएं कि अगर सपोज करिए कि बच्चे जुड़ गए, सहना ने जो बात हमें बताई मैं उससे थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ, किसी का इंटरेस्ट जाग गया कि मुझे समाज सेवा करनी ही करनी है और जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली है, मुझे भी रुपये पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि रुपये पैसों से ही आखिर में घर चलता है, तो करियर की मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ की बात आपसे जानना चाहता हूँ।
2: आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं दो आयामों से दूंगा। एक है कि अगर किसी को लगता है कि किसी बच्चे को वो देखता है और वो चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे कर पाऊँ, तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक 1098 हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड लाइन का। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही संगठन का बचपन बचाओ आंदोलन का हेल्पलाइन नंबर है 1800102722। आप इन दो हेल्पलाइन का मदद ले सकते हैं। और अगर आपको कोई बच्चा किसी विषम परिस्थिति में या अकेले आपको दिखता है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आपका एक कॉल भी उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।
0: बहुत कुछ।
2: और साथ ही अगर आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई बच्चा है और वो चाहता है कि किसी कॉज से जुड़े और कुछ सीखने को उसे मिले और भविष्य में उसके कुछ आयाम खुले, तो आप एज अ वॉलेंटियर कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश सत्यार्थी जी और संगठन की अप्रोच रही है और सोच रही है कि कैसे पूरे विश्व को और समाज को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, बच्चे को कम स्तर ना देखा जाए, उसके साथ एक दोस्ताना हम व्यवहार रखें, उसकी बातें भी सुने और ना कि उसमें हर चीज़ थोपे। तो उसके लिए हमारे पूरे संगठन का एक झुकाव रहा है यूथ में, तो अधिक से अधिक यूथ एज अ वॉलेंटियर, एज ए इंटर्न, और अगर उनका शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो वो हमारे विभिन्न विभागों के साथ जुड़ सकता है। तो उसका एक प्रोसेस है, आप हमारी वेबसाइट के करियर वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एज अ वॉलंटियर आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप दोनों ने अपने करियर की यहाँ शुरुआत की, मैं समझता हूँ कि आप एक समाज सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के घर में एक उजाला ला रहे हैं। किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से आप लोग मिला रहे हैं, उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, एक हेल्दी वातावरण आप लोग दे रहे हैं। तो आप दोनों को, आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, मेरे साथ जुड़ी रही सहना प्रियदर्शनी, आप थे अजीत सिंह रावत, जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, और जो कि कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को हम प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उसको परेशान कर रहे होते हैं। हम ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ में कटोरा होता है, जबकि उसके हाथ में कागज कलम होनी चाहिए थी, वो पढ़ता लिखता आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब ये संस्था, इसी तरीके की संस्थाएं काम कर रही होती हैं, तो निश्चित तौर पर एक खुशी मिलती है, एक अच्छा वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: मैरी सुशीला तेरो बालक ऐसो रो रहो है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो यार शहद दे दे।
1: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाकई दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी हो गए, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए, तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुरु शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.
4: राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:00 ये 2 मिनट हो चुके हैं और 19 तारीख है। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ जा रहा है और उसका जो फर्क है वो हमारी सेहत पर पड़ ही रहा है। मुझे भी थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है और जो एनर्जी, जो उत्साह होना चाहिए उसमें कमी नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हर रोज बात करता हूँ वैसे ही मैं आज भी आपसे बात कर पाऊँ और हमेशा आपको अप टू डेट रख पाऊँ। 9:02 19 तारीख, यानी कि आज का दिन बुधवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना रहती है कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM। लेकिन सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं ककन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: गगन खोखरी फतेह

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। मौसम का मिजाज यानी कि आज वेदर अपडेट क्या है। आज है 19 अगस्त 2026 को। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR में आसमान मुख्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बौछार पड़ने की संभावना है। और यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और NCR के हालात क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। IMD के अनुसार यानी कि मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय है और जिससे रुक रुक कर कहीं फुहारें पड़ सकती हैं। और चेतावनी यह है कि दिल्ली हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंशिक तौर पर तेज हवाएं यानी कि 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। और सटीक और पल पल के अपडेट्स के लिए बस यही कहूंगा कि गूगल के माध्यम से आप अपडेट्स लेते रहेगा। लेकिन यूपी के जो मिजाज हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है। 19 अगस्त यानी कि आज को कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है और खासकर पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है और कुछ इलाकों में बहुत भारी से ज्यादा बारिश होने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर आपके कोई कुशल क्षेम किसी का लेना चाहते हैं तो आप उनको फोन कर अलर्ट कर सकते हैं। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होशो आवाज में चलाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: हाय मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाभी लो मिठाई खाओ।
1: अरे किस खुशी में?
0: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
1: वाह तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए सब उसे।
0: ओहो भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
1: अनीमिया?
2: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: ललिता लो मिठाई खाओ।
0: अरे वाह रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित।

0: में जारी। एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ऐसी ही अच्छे अच्छे संदेश हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं ताकि आप अलर्ट रहें, जिंदगी में आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। और इसीलिए बस सुनते रहिए मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और वैसे रेडियो की जो प्रोग्रामिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हम यहां से ऑन एयर होते हैं। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने मौसम के मिजाज के बारे में आपको अप टू डेट किया था। अपडेट यही थी जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मौसम जब बदलता है तो निश्चित तौर पर उसका जो फर्क है वो आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में करें क्या, क्या ना करें, बस यही समझ में आता है कि बाबूजी जरा धीरे चलो। अजी देखो आज हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है गगन बहादुर की, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, लेकिन फिर भी हम बड़ी एनर्जी के साथ आपके बीच में, हाँ बड़ी एनर्जी के साथ हम आपके बीच में। और सच बात तो ये है कि जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल भराव हो जाता है, तो बहुत सोच कर समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। ट्रैफिक भी बहुत स्लो चल रहा होता है, लेकिन हमने फील किया है कि जब आप अपने ऑफिस आना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट पहले अगर आप घर से निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। ये वाला जो सुबह वाला जो नियम है शाम को लागू कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके एचओडी और डीन के ऊपर। हाँ ये भी सही है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय, अगर वो आपको परमिट कर रहे हैं तो लेकिन समय से आप ऑफिस पहुंचे और समय से ही निकले। काहे आप पहले निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और 10 से 15 मिनट अगर आपको ऊपर हो गया तो क्या दिक्कत परेशानी है। सही है बेटा, अंदर कुछ बाहर कुछ। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और यातायात के नियम कायदे कानून का पालन करेगा। और एमएटी की तरफ से जब आप आते हैं शारदा विश्वविद्यालय की तरफ से, तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा आपको जाम मिलता है। और ग्रेटर नोएडा परिचौक या नोएडा एक्सपो मार्ट, ये जो गोल चक्कर है, यहां पर जाम की स्थिति बनी ही रहती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समय अगर आप पहले लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। हाँ, शारदा विश्वविद्यालय से अगर आप जब एग्जिट करते हैं शाम को 5 बजे, 4:30 बजे या 4:30 के बाद, तो मुझे लगता है कि वैकल्पिक रास्ता गेट नंबर 5 से आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल यू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार, 23 मिनट 19 तारीख, गुड मॉर्निंग मंगवा के नाम पे।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौकर 29 मिनट हो चुके हैं। 19 तारीख है और क्या है खास उसके बारे में जान लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है 19 अगस्त, तो आज 19 अगस्त 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो मैच खेला जा रहा है, पहले टेस्ट मैच का 5वां दिन और अंतिम दिन है, तो भारतीय टीम इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में बनी हुई है और जीत की दहलीज पर वो खड़ी हुई है। तो लख बधाइयाँ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ रही तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका को मैच जीतने के लिए कुल 372 रनों की जरूरत थी। चौथे दिन का खेल खत्म तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 84 रन बना लिए थे। और जो जीत का समीकरण है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट की दरकार है। और जबकि श्रीलंका की पारी में 4 विकेट खोकर 84 रन इन लोगों ने बना लिए थे, तो अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करूं तो बात करें कि विकेट किस किस ने लिया, क्या क्या वो क्राइटेरिया था, तो गेंदबाजों का जो जलवा था वो देखते ही बन रहा था। युवा स्पिनर मानव सुधार ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 विकेट उन्होंने चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज को 1 सफलता मिली है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव देखिएगा। फिलहाल मौसम का जो मिजाज अब बदल रहा है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं और किन किन तरीकों से अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाकर रख सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हाँ, आंखें भरी भरी, सच बातें, आंखों में जलन होती है, सीने में जलन होती है, ये क्या है? मैं शायरी लिख रहा हूँ, इस पे गाने बन सकता है? नहीं, ऑलरेडी गाने हैं। अच्छा, तो कुछ नया बनाएंगे। हाँ, आंखों की भी शिकायत हो जाती है जब बारिश का मौसम होता है। तो कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:43 हो चुके हैं। 19 तारीख है यानी कि बुधवार का दिन, और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो जाहिर सी बात है कि उसका समाधान ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है, या पेट दर्द की शिकायत है। सच बात तो ये कि ऐसे समय में यानी कि सावन के महीने में दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे में क्या करें, यानी कि मच्छरों से बचाव होना बहुत ज़रूरी है। डेंगू मलेरिया से अपने आप को बचा कर रखें। 10 मिनट का होम इंस्पेक्शन यानी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के निवासी अपने घर के बालकनी और कोनों, गमलों के नीचे की जो ट्री हैं, एसी के जो आउटडोर यूनिट हैं, छतों पर जमा पानी को तुरंत आप साफ कर दें। ये मैं ग्रेटर नोएडा नोएडा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और अगर आगे भी पहुँच रहे हैं तो सभी लोगों के लिए ये बात है। और फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं वो आप पहने, यानी कि इस मौसम में बाहर निकलते समय पूरी आस्तीन वाले कपड़े आप पहने, और दिन हो रात हो दोनों समय मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर आप रखें, चाहे जब भी आप सोने के लिए जा रहे हों। और जल भराव का जो मामला है ये बड़ा संदिग्ध मामला है, इससे अपने आप को बचा कर रखिएगा, क्योंकि जल भराव जब होता है तो हमें गड्ढे नज़र नहीं आते, और जब भी कभी बाहर से आप आ रहे हैं तो पैरों को तुरंत साफ कर कर ही आप अंदर घर में गृह प्रवेश करें। पानी को उबाल कर पिए, बाहर के खाने और कटी सब्जियों से आप परहेज करें, और भीगने पर अपने बदन से कपड़े बदल लीजिए। यदि आपको तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द या जोड़ों में गंभीर दर्द या उल्टी जैसी शिकायत हो तो तुरंत सेल्फ यानी कि खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, वक्त रहते हुए अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर।

0: Revolution. Never put investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

गोल्डी सोहेल की आवाज, गोल्डी सोहेल का म्यूजिक, गोल्डी सोहेल के बोल सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग मिलते हैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, तो बजट थोड़ा कम हो ही जाता है ना। यानी कि कंप्लीट पैकेज होना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिस राह से आप गुजर रहे हैं तो बहुत स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ेगा। जहां ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी नहीं है तो नियम कायदे कानून के साथ आप आगे बढ़ेगा। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जब आपकी छुट्टी होती है शाम को 4:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, तो जहां सिंगल लेन है वहां लोग डबल लेन बना देते हैं। यानी कि एक तरफ से निकलने का रास्ता आप बना देते, सामने वाले व्हीकल को आप आने नहीं देते और जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां हो जाती है। ये कुछ लोग ऐसी गलतियां करती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें यातायात यानी कि ट्रैफिक के जो नियम कायदे कानून है उसको फॉलो करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। शारदा विश्वविद्यालय के सामने, शारदा विश्वविद्यालय के बराबर में शारदा हॉस्पिटल भी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें और एम्बुलेंस अगर कहीं पर भी फंसी हो तो सबसे पहले उसको रास्ता दें। चलिए, क्या खास होने जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास बात जब सामने निकल कर आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको अप टू डेट रखें। अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पर आपका कंटेंट जाता है, तो सुनने में आ रहा है कि 24 अगस्त 2026 से आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है तारीख और इस दिन यूट्यूब लंबे वीडियो, लाइव स्ट्रीम और जो दूसरे वीडियो फॉर्मेट हैं, व्यू गिनने का जो तरीका है वो बदलने जा रहा है। आप कंपनी व्यू को वीडियो के प्ले होते ही गिनने की व्यवस्था लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि व्यू आपके बढ़ते चले जाए, है ना। तो ये खास अपडेट थी सिर्फ सुरुशारदा 90.8 एफएम पर। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशारदा 90.8 एफएम। तू जाने है कहां, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली, कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी, लिरिसिस्ट कौसर मुनीर। तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो ये सच है, महिलाओं का आदर किया जाता है और उनको पूजा भी जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम दूसरी पिक्चर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार भी होते हैं, यानी हिंसा भी होती है। तो यही एक प्रयास है कि महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आशा वर्कर के बारे में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। बात करते हैं कानून के बारे में, बात करेंगे अपराध के बारे में और कानूनी कार्यवाही के बारे में। तो सबसे पहले कानून आता है गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व जांच तकनीक अधिनियम। ये अधिनियम गर्भधारण के पूर्व या बाद में लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए है। अपराध किस तरीके का अपराध है, आइए बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड और एमनियोसिंटोसिस यानी बच्चेदानी के पानी की जांच, इसके माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। दूसरा बिंदु इसी के अंतर्गत आता है कि कोई भी प्रयोगशाला संस्थान या अस्पताल जो गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में ये पता लगाने के लिए कोई भी जांच करे कि वो लड़का है या लड़की। तीसरा बिंदु आता है इसी के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति

गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से ये बताने की कोशिश करे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। अगला बिंदु है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अस्पताल का किसी भी माध्यम से प्रचार करने की कोशिश करे कि जो कि लिंग चयन की सुविधाएं प्रदान करता हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है, ऐसा कोई भी अस्पताल जो लिंग निर्धारण की इन तकनीकों का उपयोग कर रहा हो और उचित अधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया हो। कोई भी परिवार या उनके रिश्तेदार जो गर्भ के बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करे। आखिरी बिंदु है, जब ऐसी जांच करने के लिए महिला से निर्धारित प्रारूप में लिखित सहमति लेकर इसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी न दी गई हो। बात सामने आती है, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, ये एक सवाल है। जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही क्या है, सजा का प्रावधान क्या है, बात करते हैं। किसी भी ऐसे पेशेवर व्यक्ति या कर्मचारी एवं वो व्यक्ति या परिवार को जो इस कानून का उल्लंघन करता है, उसे 3 साल तक की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। अगला बिंदु इसी में, ऐसा व्यक्ति या परिवार जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत आगे भी अपराध करता है, उसको 5 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? उत्तर है नहीं। अब बात करते हैं जो कि अगला कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून। इसके अंतर्गत बात सामने आती है अपराध की। घरेलू हिंसा में ये सभी शामिल हैं, वास्तव में किया गया कोई उत्पीड़न या उसकी धमकी जो शारीरिक, यौनिक, शब्दों के द्वारा भावनात्मक या आर्थिक हो सकता है। कानूनी कार्यवाही क्या है, सजा क्या है, बात करते हैं। 1 साल की जेल या अधिकतम 20,000 रुपए तक का जुर्माना। मुख्य बिंदु क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एक महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकती है और संरक्षण अधिकारी के पास घरेलू हादसे की रिपोर्ट यानी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकती है या सीधे मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के पास जा सकती है। अगला बिंदु है, इसी अधिनियम के अंतर्गत महिला को संरक्षण का आदेश, अभिरक्षा यानी सुपुर्दगी का आदेश, आर्थिक सहायता, सुरक्षित आवास का अधिकार, आश्रय घर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार मिला हुआ है। सवाल आता है, क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? उत्तर है गिरफ्तारी तभी होगी इस संबंध में जब अपराध या समस्या यानी कि जैसे मारपीट या दहेज से संबंधित प्रताड़ना किसी अन्य कानून जैसे भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत गिरफ्तारी लायक अपराध की श्रेणी में आते हों। अब बात आती है कि सजा क्या होगी यानी कि कानूनी कार्यवाही क्या होगी। एक पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, न्यायाधीश जिसे घरेलू हिंसा की शिकायत मिली है या वो घरेलू हिंसा की किसी जगह पर उपस्थित है या जब उसे घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में वो अधिकारी जो अभी अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया, उन अधिकारों के बारे में, उन सुविधाओं के बारे में, राहत के बारे में, सभी आदेशों के बारे में वो बताएगा। अगला कानून क्या है, अगला सजा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद।

पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, और इन्हीं सारी बातों के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक महिला को या एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बात हो रही है कानूनों के बारे में। अगला कानून है दहेज रोकथाम का अधिनियम, दहेज दिए जाने या दहेज स्वीकार किए जाने की रोकथाम के लिए। ये बात इसके अंतर्गत आती है। अपराध यानी दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या है? दहेज लेने या देने के लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा और ₹15,000 या दहेज की राशि के बराबर का जुर्माना, दोनों में जो भी ज्यादा हो। अगला बिंदु, दहेज की मांग के लिए 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की जेल की सजा और ₹10,000 जुर्माना। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अब बात करते हैं अगले कानून के बारे में, बाल विवाह की रोकथाम का अधिनियम। ये एक अपराध है। किसी भी 2 व्यक्ति की शादी बाल विवाह है, यदि उनमें से एक भी कानूनी रूप से बालिग होने की उम्र से कम है। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी यानी सजा क्या होगी? बात करते हैं, कोई भी पुरुष जो 18 साल से ज्यादा की उम्र का है, किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी बाल विवाह के समारोह का संचालन करता है या उसे कराता है, उसे 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। मुख्य बिंदु, जैसे जिन लड़कों और लड़कियों का नाबालिग उम्र में जबरदस्ती बाल विवाह कराया गया है, उन्हें ये अधिकार है कि बालिग होने के 2 साल के अंदर वो अपनी इस शादी को खत्म कर सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में नाबालिग उम्र में की गई शादी को बालिग उम्र में पहुंचने के लिए पहले भी खत्म किया जा सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। इसी के अंतर्गत सजा आती है, सभी कीमती सामान, पैसा और उपहार अनिवार्य रूप से वापस किए जाएंगे। यदि शादी खत्म की जाती है और लड़की को रहने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराना होगा जब तक वो बालिग न हो जाए। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे, और न्यायालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के उचित हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सुपुर्दगी उनके माता पिता को दी जाए। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसके अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। अब बात करते हैं एक और नए कानून के बारे में, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 के विषय में। कानून का नाम एसिड यानी तेजाब फेंकना, धारा 326A और B। अपराध, एसिड यानी तेजाब फेंकना या ऐसा करने का प्रयास करना चाहे इससे चोट पहुंची हो या नहीं। सवाल पैदा ये होता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? कम से कम 10 वर्ष की जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, और एक उचित तर्क संगत जुर्माना, चिकित्सा संबंधी खर्चों के लिए, साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा। एसिड यानी तेजाब से हमला, कम से कम 5 साल की सजा, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। हमला करने वाले को जुर्माना भी देना होगा। सवाल ये सामने आता है कि क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। प्रश्न ये भी सामने आता है, क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। यौन उत्पीड़न, धारा 354, धारा 354A, धारा 509, ये कानून का नाम है। अपराध इसके अंतर्गत आता है, नंबर 1, शारीरिक छेड़छाड़ और अन्य हरकतें जिसमें अनचाहे और अन्य तरह के भद्दे यौन इशारे शामिल हैं। नंबर 2, किसी तरह के यौन अनुग्रह के लिए आग्रह या मांग करना। नंबर 3, यौन संबंधित अर्थों वाली टिप्पणी करना। नंबर 4, जबरन अश्लील साहित्य, फिल्में या ऐसी कोई भी सामग्री दिखाना। नंबर 5, कोई भी अनचाहा शारीरिक, मौखिक या अन्य गैर मौखिक व्यवहार जो कि यौन अर्थों वाला है। ये सभी इंटरनेट, फोन, पत्र या फोटो के द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न पर भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत सवाल ये आता है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, 5 साल तक की कड़ी जेल, जुर्माना या दोनों। नंबर 1 और नंबर 2 में बताए गए अपराध के मामलों में 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों। सवाल ये भी सामने आता है, क्या ये संज्ञेय अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, सिवा उन मामलों के जब महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक छेड़छाड़ की गई हो, या यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया हो, या यौन उत्पीड़न की चेष्टा से आपराधिक रूप से ताकत का इस्तेमाल किया गया हो। अगला कानून है कपड़े उतारना यानी निर्वस्त्र करना, धारा 354B। अपराध, किसी महिला को उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना या ऐसा करने में किसी की मदद करना। सवाल, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा और जुर्माना। क्या ये कंगनाइजेबल यानी संज्ञेय अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है दृष्टि रति, धारा 354C। अपराध, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला को उसके निजी क्षणों में देखना या उसकी फिल्म उतारना, इसमें वो भी शामिल है जब वो नहीं चाहती हो कि उसे देखा जाए। इसमें वो भी शामिल है जब महिला की स्तन, यौनंग एवं पुट्ठे खुले हुए हों। इसमें ये बात भी शामिल है कि जब वो शौचालय का प्रयोग कर रही हो या अपनी निजता में यौन क्रिया कर रही हो। सवाल ये सामने आता है, किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा, पहले बार के अपराध के लिए कम से कम 1 साल की जेल, जो 3 साल तक की हो सकती है। दूसरी बार और उसके बाद दोबारा या फिर से किए गए अपराध के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, जिसे 7 साल तक की बढ़ाया जा सकता है। क्या ये संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल अपराध है, अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रति के मामलों में सजा होने पर। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और इस बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, वाकई बहुत एक अहम खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन बातों का आप सुन रहे होंगे, सुन रही होंगी, समझ रही होंगी, और इन बातों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। सुनते रहें
ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आशा वर्कर की क्या भूमिका है, हमारी आपकी क्या भूमिका है, इसी संबंध में कुछ कानूनों के बारे में हम जान रहे हैं। बात करते हैं लगातार पीछा करना धारा 354D के अंतर्गत ये कानून है। अपराध किसी महिला का पीछा करना और उससे बार बार संपर्क करना जब उस महिला ने स्पष्ट कर दिया हो कि वो नहीं चाहती है कि उससे संपर्क किया जाए। इसमें इंटरनेट, इसमें ईमेल, फोन और कोई दूसरी अन्य सामग्री या यूं कहें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के साधन शामिल है। इसमें इंटरनेट पर पीछा करना और सेल फोन और मोबाइल पर पीछा करना शामिल है। सवाल ये है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। सजा कम से कम 1 साल की जेल, जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, एवं जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, पहली बार सजा होने पर, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार या उसके बाद दोबारा दृष्टि रति के मामलों में सजा होने पर। अगला कानून है मानव तस्करी, धारा 370(1) और 370A अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी महिला या बच्चे को बल प्रयोग के द्वारा धमकी, अगवा करके, धोखा और अन्य तरीकों से अपहरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उन्हें अपने पास लेना और उनको अपने पास रखना जो उनका शोषण करने के इरादे से किया गया हो। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही, इसके अंतर्गत क्या सजा आती है? बात करते हैं नंबर 1, 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा, जो उम्र कैद तक की हो सकती है, और जुर्माना भी। बार बार ऐसे अपराध करने वाले और सरकारी कर्मचारी जो ऐसा अपराध करते हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा। तीसरा पॉइंट, मानव तस्करी करके रखे गए किसी महिला या बच्चे का शोषण करने की सजा, 3 से 5 साल तक की जेल, जो कि 5 से 7 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं। अगला कानून है बलात्कार, धारा 376 अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिला के मुख द्वार, योनि द्वार, मल द्वार और मूत्र द्वार में किसी व्यक्ति के द्वारा अपना मुंह, लिंग या अन्य कोई भी चीज डालना जो उसकी सहमति के बिना एवं उसकी इच्छा के खिलाफ किया गया हो। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ, सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाए, साथ ही जब उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई हो। सजा की बात आती है 7 से 10 साल तक की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना सामूहिक बलात्कार के मामलों में, या यदि बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाए या पीड़ित व्यक्ति लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय शारीरिक अवस्था में पहुंच जाए। अगला बिंदु है ऐसे मामलों में 20 साल की कड़ी जेल की सजा, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही दोबारा या बार बार ऐसे अपराध किए जाने पर उम्र कैद की सजा। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं, सिवाय ऐसे मामलों के जब पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उससे अलग हो जाने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया जाए। अगले कानून का नाम है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक यातना, धारा 498A अपराध। इसके अंतर्गत बात सामने आती है जो आत्महत्या का कारण बने, जिससे महिला को गंभीर चोट लग जाए, इसे दहेज की मांग करना शामिल है। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिसके द्वारा चोट पहुंचती हो, कोई रिश्तेदार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई सरकारी कर्मचारी शिकायत कर सकता है। सजा की बात आती है कि 3 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है नहीं, दहेज की मांग या मानसिक शारीरिक क्रूरता जिससे चोट पहुंचे। अगले कानून के नाम के अंतर्गत बात आती है कि यदि कोई लोक सेवा कानून का उल्लंघन करता है
ये धारा बनती है 166A। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है कम से कम 6 महीने की जेल की सजा जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी। क्या ये संज्ञेय अपराध अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है ऐसे केस में? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। अगली बात सामने आती है, यानी कि कानून के नाम की बात मैं कर रहा हूँ, कि कोई अस्पताल अगर उत्पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है, धारा 166B, सजा 1 साल की जेल की सजा और जुर्माना। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है नहीं। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो ये कुछ खास बातें कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ कि इन बातों को आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा। और जब ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा रहा था तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जानना समझना जरूरी है कि अगर ये अपराध हो रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद करें, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है तो वो सजा का हकदार है। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, और इसके अंतर्गत बात हो रही है एक आशा वर्कर के बारे में। बात हो रही है अब कानून के बारे में, अपराध के बारे में, कानूनी कार्यवाही के बारे में। बात करते हैं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का कानून 2012। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानून का नाम के अंतर्गत ये बात मैंने आपको बताई। अपराध इसे इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि शरीर में घुसेड़कर और अन्य विभत्स तरीके से घुसेड़कर किया गया यौन हमला। दूसरी बात, यौन हमला और अन्य विभत्स तरीकों से किया गया यौन हमला। नंबर 3, यौन प्रताड़ना। नंबर 4, एक बच्चे को अश्लील इरादे या गतिविधि के लिए प्रयोग करना। ये सभी प्रयास करना या किसी को ऐसे प्रयास करने में मदद करना भी दंड के योग्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि ऐसा अपराध हो सकता है या जानता है कि ऐसा अपराध हुआ है, उसे इसकी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस को बच्चों के उत्पीड़न के सभी मामलों में FIR दर्ज करनी होगी। बात सामने आती है कि किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। जवाब है, कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो उसे अनिवार्य रूप से इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति पुलिस को ऐसे अपराध की सूचना देता है जिस अपराध के लिए 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत बात करते हैं तो ऐसी घटना की सूचना न देने के लिए 6 माह तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। नंबर 2, ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 7 साल से 10 साल तक की जेल की सजा जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना। नंबर 3, बच्चों की यौन प्रताड़ना के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ, यदि किए गए अपराध के लिए 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, नहीं, जिन मामलों में 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अन्य धाराएं। इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में बातें सामने आती हैं कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना, IPC 313। किसी महिला के ऊपर हमला या आपराधिक रूप से ताकत का प्रयोग जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत से किया गया हो, IPC 342। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या ऐसा करने की धमकी देना, IPC 503। गलत या अवैध तरीके से किसी को बंधक बनाना, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से कोई दायरा बनाकर उसी में बंद होकर रहने के लिए गलत तरीके से मजबूर करता है, तो ये अवैध रूप से बंधक बनाना होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे व्यक्ति यानी कि नाम दे दिया बी को किसी बंद जगह में जाने के लिए मजबूर करता है और उसे वहां बंद कर देता है, और इस तरह से बी को बंद दीवारों के दायरे के बाहर कहीं भी जाने से रोका जाता है। इससे ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। नंबर 2, ए द्वारा बी के मकान के बाहर निकलने के सभी रास्तों पर हथियार बंद लोगों को तैनात कर दिया जाता है, और ए द्वारा बी से कहा जाता है कि ये लोग उस पर हमला करेंगे, यदि वो मकान से निकलने की कोशिश करेगा तो ए ने बी को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है, और ये बात सामने आती है धारा 340 IPC के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं धारा 46 यानी धारा 46 उपधारा 4। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसा करना जरूरी है, तो एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये जगह आती है जहां अपराध हुआ हो, जहां गिरफ्तारी की जानी है, एक लिखित आवेदन के द्वारा उनकी पहले से अनुमति ली जाएगी। अब बात करते हैं 0 FIR के बारे में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी संज्ञेय अपराध यानी जिनके बारे में ये बताया गया है कि हो जाने की सूचना मिलने पर पुलिस FIR दर्ज करेगी। यदि ऐसा लगता है कि अपराध उस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है, तब 0 FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, यदि FIR दर्ज होने के बाद की हकीकत में ये पता चलता है कि ये मामला किसी दूसरे पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र का है,
तब FIR को उस पुलिस थाने में भेजा जा सकता है। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 170 के अनुसार 0 FIR दर्ज करने वाली पुलिस को इसे आवश्यक रूप से संबंधित पुलिस थाने में भेजना पड़ेगा। नंबर 4, किसी अपराध या घटना के होने पर यदि ये तय करने में देरी होती है कि मामला किस थाने के क्षेत्र का है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण अपराधी को भागने का मौका मिलने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात सामने आती है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस मामले में 0 FIR या सामान्य FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो इसके लिए संबंधित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी पर IPC धारा 166A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, विशेषकर यदि ये एक यौन अपराध का मामला है। बात सामने ये भी आती है कि उसे विभागीय जांच द्वारा दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चिकित्सा से संबंधित लापरवाही या किसी अन्य लापरवाही के कारण मृत्यु। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जल्दबाजी या उतावलेपन यानी अथवा लापरवाही के कारण हुई मृत्यु। यदि मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? जवाब है हाँ। कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत बात सामने आती है 2 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों। क्या ये संज्ञेय अपराध है अथवा क्या पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब है हाँ। क्या पुलिस जज के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा कर सकती है? जवाब है हाँ। तो आज हम बात कर रहे थे महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत आज हमने बात की इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय के विषय में। आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपने जानकारी जरूर उठाई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई शंका है, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं, या इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घर में भी हमारी माँ हैं, बहन हैं। जब हम उनके लिए सम्मान चाहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जग में जो दूसरी माताएं हैं, जो बहनें हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: भाग 2, मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करना, पृष्ठ संख्या 55। मशीनें हमारे जीवन को सरल बनाती हैं और हम उपकरणों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करने वाली परियोजनाएं आपको विभिन्न मशीनों और उपकरणों के साथ कार्य करने, विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर नई वस्तुएं बनाने एवं सुधार और रखरखाव करने में सहायता करेंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने, लकड़ी और बांस को आकार देने, मिट्टी के बर्तन बनाने चाक एवं बिना चाक के उपयोग से, कपड़े सिलने, कपड़े सजाने, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करके खेल और एनिमेशन बनाने एवं अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके खिलौने बनाने से संबंधित परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप अपने स्कूल बैंड के लिए वाद्य यंत्र भी बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने साथियों के सहयोग से क्या नया एवं रोचक कर सकते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना को चुन सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी रोचकता की परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 57। निर्माता कौशल, मेकर स्किल्स। ये परियोजना आपको सरल मशीनों के विषय में जानने में सहायता करेगी। ये मशीनें कार्य को सुगम बनाती हैं। आप सरल मशीनों का उपयोग कर अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने का कौशल विकसित करेंगे और साइकिल में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनों के विषय में जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि साइकिल को सुदृढ़ एवं क्रियात्मक स्थिति में रखने के लिए इन मशीनों का रखरखाव और सुधार कार्य कैसे किया जाता है। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। सरल मशीनों के विषय में जानने में, सरल मशीनों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने में, निर्माता कौशल के लेआउट और रखरखाव की योजना बनाने में, साइकिल में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनों के बारे में सीखने में। चित्र 3.1, उपकरणों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ उपयोगी बनाना। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इसमें कुछ छात्र छात्राएं उपकरणों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से कुछ उपयोगी बना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 58। हमारे आसपास साइकिल, खिलौने, बस, रिक्शा और ऑटो रिक्शा जैसी कई जटिल मशीनें हैं। हम हैंडल और अपने बल के माध्यम से बड़ी सरलता से दरवाजे एवं खिड़कियां खोलते और बंद करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये वस्तुएं कैसे काम करती हैं? इन सभी वस्तुओं में सरल मशीनें होती हैं। उदाहरण के लिए पहिया, धुरी और घिरनियां सरल मशीनें हैं। सरल मशीनें हमारे कार्य को सुगम बनाने में सहायता करती हैं। वे हमें हमारी क्षमता से परे काम करने में सहायता करती हैं, जो कठिन या संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या हम अपने हाथों से अत्यधिक भारी बोझ उठा सकते हैं या लकड़ी तोड़ सकते हैं? पहियों और धुरी वाली गाड़ी अत्यधिक भारी वस्तुओं को कम बल के उपयोग से सरलता से उठा सकते हैं। इसी तरह घिरनी अत्यधिक भारी वस्तुओं को उठा सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े आकार की बस भी वास्तव में आपस में जुड़ी हुई छोटी मशीनों से बनी होती है? इसके साथ ही बस में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें साइकिलों और खिलौनों तथा दरवाजों और खिड़कियों में भी उपयोग की जाती हैं। हाँ, ये सत्य है कि ये सरल मशीनों से बने हैं। नीचे दिए गए चित्र 3.2 को देखिए और चर्चा कीजिए कि सरल मशीनें और क्या कर सकती हैं। झुका हुआ आनत समतल, इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ झुके हुए आनत समतल का एक चित्र है। पच्चर, वेज। यहाँ पच्चर का एक चित्र है। उत्तोलक, लीवर। यहाँ उत्तोलक का एक चित्र है। पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। यहाँ पहिया और धुरी का एक चित्र है। पेंच, स्क्रू। यहाँ पेंच का एक चित्र है। घिरनी, पुली। यहाँ घिरनी का एक चित्र है। चित्र 3.2, हमारे आसपास उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें। इस परियोजना में हम सबसे पहले सीखेंगे कि खिलौने बनाने के लिए सरल मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। इससे हमें ये समझने में सहायता मिलेगी कि ये मशीनें कैसे कार्य करती हैं। इसके पश्चात हम साइकिल में उपयोग की जाने वाली सरल मशीनों की पहचान करना एवं उन्हें क्रियात्मक स्थिति में बनाए रखना भी सीखेंगे। पृष्ठ संख्या 59। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें सरल मशीनों के उपयोग के उदाहरण हैं। चित्र 3.3। सरल मशीनें हमारे परिवेश में सदियों से उपयोग में आ रही हैं। प्राचीन काल के लोग भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आनत समतल इंक्लाइंड प्लेन चित्र 3.3 का और घिरनी चित्र 3.3 खा का उपयोग किया करते थे। प्राचीन वास्तुकला। प्राचीन काल में भारत में बड़े पत्थरों से निर्मित मंदिरों का निर्माण कुशल श्रम, सरल उपकरणों और मशीनों एवं ज्ञानपूर्ण अभियांत्रिकी तकनीकों के संयोजन का उपयोग कर किया जाता था। इस प्रक्रिया में आमतौर पर बड़े पत्थरों को खदान से निकालना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तराशना, आकार देना एवं इच्छित संरचना में एकत्रित करना सम्मिलित था। श्रमिक पत्थरों को तराशने के लिए छेनी और हथौड़े जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया करते थे। उन्होंने भारी पत्थरों को उठाने और रखने के लिए विभिन्न नवाचारी तकनीकों का भी प्रयोग किया, जैसे आनत समतल, उत्तोलक, लीवर एवं घिरनी। आज भी इन सभी सरल मशीनों का उपयोग किया जाता है। चित्र 3.3। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। 1. सरल मशीनों का उपयोग करके विभिन्न सामग्रियों से खिलौने बनाए जा सकते हैं, जैसे गुलेल, रोबोटिक आर्म, रबड़ बैंड नाव, बैलून कार, रबड़ बैंड कार और पवन चक्की बनाने में। पृष्ठ संख्या 60। 2. विभिन्न सरल मशीनों की पहचान करने में जो साइकिल जैसी जटिल मशीन बनाती हैं। 3. साइकिल के मुख्य भागों और उनके कार्यों को पहचानने में। और 4. साइकिल में आम समस्याओं को पहचानने में, जैसे पंक्चर टायर, असंतुलित ब्रेक, आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत करना। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सरल मशीनों का उपयोग करके अनुपयोगी वस्तुओं से खिलौने बनाने के लिए। बिंदु 1. आवश्यक सामग्री: कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पाइप, खाली प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक चम्मच, पीने के पाइप स्ट्रॉ, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन, कागज, आइसक्रीम स्टिक, धागा, रबड़ बैंड, गोंद, टेप, ग्लू

आवश्यक उपकरण, कैंची, मीटर स्केल और कटर। साइकिल में प्रयोग की गई छोटी मशीनों के बारे में जानें। आपको कम से कम 5 से 6 साइकिलों की आवश्यकता होगी। आवश्यक सामग्री, तेल या ग्रीस और स्पैनर सेट। उपकरण, रेंच, चेन ब्रश, टायर लीवर और एयर पंप। आपको किसी साइकिल की दुकान पर भी जाना पड़ सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध करना होगा जो आपके विद्यालय आकर साइकिल की मरम्मत करना आपको सिखा सके। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? बिंदु 1, काटने के औजारों और अन्य तेज धार वाले उपकरणों का प्रयोग सावधानी से कीजिए। बिंदु 2, ये सुनिश्चित कीजिए कि आप गतिविधि समाप्त करने के बाद गतिविधि क्षेत्र को साफ कर रहे हैं और अपने शिक्षक के निर्देशों के अनुसार सामग्रियों और उपकरणों का भंडारण कर रहे हैं। बिंदु 3, खिलौनों का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित कीजिए कि आप स्वयं को या दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। पृष्ठ संख्या 61, आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? क्या आप अपने आसपास किसी सरल मशीन की पहचान कर सकते हैं? अपने आसपास देखिए कि आपको क्या मिल सकता है। गतिविधि 1, हमारे आसपास की सरल मशीनें। अपने आसपास की हर उस वस्तु की पहचान कीजिए जो आपको कुछ करने में सहायता प्रदान करती है। ये पता कीजिए कि ये स्वयं एक सरल मशीन है या सरल मशीनों से बनी है। इस विषय में आप अपने शिक्षक या मित्रों और परिवार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अवलोकन को तालिका 3.1 में अंकित कीजिए। तालिका 3.1, हमारे आसपास उपयोग की जाने वाली सरल मशीनें। क्रम संख्या, सरल मशीन का नाम, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। 1, चाकू, इसका सब्जियों और फलों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। 2, सब्जी छीलने वाला यंत्र, छीलनी, इसका उपयोग फलों और सब्जियों के छिलके निकालने के लिए किया जाता है। 3, खाली स्थान। 4, खाली स्थान। 5, खाली स्थान। 6, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 62, मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप सरल मशीनों का उपयोग कर खिलौने बनाएंगे और फिर साइकिल में सरल मशीनों की पहचान करेंगे। आगे आप सीखेंगे कि साइकिल का रख रखाव कैसे किया जाता है। इंटरनेट पर सीखना, आप इंटरनेट पर DIY+XX खिलौने का नाम शब्द खोज सकते हैं। DIY का अर्थ है इसे स्वयं कीजिए। गतिविधि पुस्तिका में दिए गए खिलौने बनाने के चरणों को देखने के लिए इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो खिलौने के नाम के साथ वीडियो शब्द भी जोड़ दें। इंटरनेट सुरक्षा, इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सावधान रहिए कि कुछ भी अनावश्यक अपलोड या डाउनलोड न करें और व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा न करें। गतिविधि 2, उत्तोलक के उपयोग से खिलौने बनाना। उत्तोलक लीवर एक निश्चित बार, फिक्स्ड बार या हैंडल होता है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है, जिसे हिंज या फुलक्रम कहा जाता है। लीवर के उपयोग करने का एक सरल उदाहरण टिन का ढक्कन खोलने के लिए चम्मच का उपयोग करना हो सकता है। इसमें चम्मच की नोक को ढक्कन के नीचे लगाया जाता है और आप दूसरे सिरे पर बल लगाते हैं। दूसरा उदाहरण खेल के मैदान में लगे झूले हैं। ऐसे खिलौने जिन्हें आप उत्तोलक लीवर का उपयोग करके बना सकते हैं वे हैं गुलेल, कैटापुल्ट, आलसी चिमटा, लेजी टोंक्स
और रोबोटिक आर्म कैंची। आप जो सरल गुलेल बनाएंगे उसमें एक ही लीवर होगा, जबकि आलसी चिमटा लेजी टोंग्स और रोबोटिक आर्म में कई लीवर होंगे। चित्र 3.4 और 3.5 अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके क्रमशः गुलेल और रोबोटिक आर्म बनाने के क्रमबद्ध चरणों को समझाते हैं। पृष्ठ संख्या 63। गुलेल का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री: आपको आइसक्रीम स्टिक, रबड़ बैंड और एक आइसक्रीम चम्मच की आवश्यकता होगी। चरण 1: लगभग 5-6 आइसक्रीम स्टिक को एक के ऊपर एक रखिए और प्रत्येक सिरे पर एक रबड़ बैंड लगाकर उन्हें एक साथ चिपकाइए। दो अन्य आइसक्रीम स्टिक लीजिए और उन्हें एक सिरे पर रबड़ बैंड से एक साथ जोड़िए। चरण 2: चित्र में समझाए अनुसार दो आइसक्रीम स्टिक को जोड़िए। चरण 3: रबड़ बैंड का उपयोग कर आइसक्रीम स्टिक को चित्र में समझाए अनुसार चिपकाइए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें गुलेल का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 64। रोबोटिक आर्म का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री: आपको आइसक्रीम स्टिक, गोंद, पुरानी बोतल के ढक्कन, टूथपिक्स और एक कटर की आवश्यकता होगी। चरण 1: आइसक्रीम की स्टिक को बीच में से छेद कर एक के बाद एक जोड़ें। एक टूथपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और इस टुकड़े को छेदों के आर पार करते हुए आइसक्रीम स्टिक को जोड़ दीजिए। जहां आपने स्टिक जोड़ी है वहां गोंद से चिपकाना न भूलिए। चरण 2: चरण 1 की तरह कई और आइसक्रीम स्टिक को जोड़िए। आइसक्रीम स्टिक का मुक्त संचलन होना चाहिए। चरण 3: कटर से बोतल ढक्कनों के बीच के भाग को काटिए ताकि आप दो गोलाकार आकृतियों को आकार दे सकें। चरण 4: बोतल के ढक्कनों को आइसक्रीम स्टिक के दोनों सिरों पर चिपका दीजिए। आपका रोबोटिक आर्म तैयार है। चित्र 3.5। आइसक्रीम स्टिक, बोतल के ढक्कन और टूथ पिक्स का उपयोग करके रोबोटिक आर्म बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें रोबोटिक आर्म का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 65। 1: एक खिलौने का एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें खिलौने के विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे दिए गए स्थान पर खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। 2: उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि 3: खिलौनों के निर्माण में नोदक प्रोपेलर का उपयोग करना। नोदक प्रोपेलर पंखे वाला एक पहिया है। जैसे कि पहिया चलता है, पंखे पानी या हवा के माध्यम से गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। आप नोदक का उपयोग करके एक रबड़ बैंड की नाव बना सकते हैं। चित्र 3.6 अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके रबड़ बैंड नाव बनाने के चरणों को क्रमबद्ध समझाता है। पृष्ठ संख्या 66। नोदक प्रोपेलर नाव का क्रियात्मक प्रारूप। सामग्री: आपको आइसक्रीम स्टिक, गोंद, स्ट्रॉ, बोतल के ढक्कन और रबड़ बैंड की आवश्यकता होगी। चरण 1: आइसक्रीम स्टिक को चित्र में समझाए अनुसार चिन्हित आकार में चिपकाइए। चरण 2: नाव का आकार बनाने के लिए अतिरिक्त आइसक्रीम स्टिक चिपकाइए। चित्र में समझाए अनुसार बिंदुओं पर छिद्र कीजिए। चरण 3: नोदक प्रोपेलर बनाने के लिए बोतल के ढक्कनों में उचित स्थान बनाइए। आइसक्रीम स्टिक को काटकर किनारों पर चिपका दीजिए। चरण 4: जैसा कि चित्र में समझाया गया है, नाव के ढक्कनों और किनारे के छेदों के माध्यम से
एक स्ट्रॉ डालिए। चरण 5, नाव की नोक पर और स्ट्रॉ के बीच में एक रबड़ बैंड चिपकाइए। चरण 6, रबड़ बैंड का उपयोग करके स्ट्रॉ एवं बोट की नोक को एक साथ लपेटिए और इसे पानी में उतारिए। आपकी नाव तैयार है। चित्र 3.6, नोदक प्रोपेलर नाव बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें नोदक प्रोपेलर नाव का क्रियात्मक प्रारूप समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 67। 1, एक खिलौने का एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें खिलौने के विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे दिए गए स्थान पर खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की एक तस्वीर चिपका सकते हैं। 2, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि 4, खिलौने बनाने के लिए पहिए और धुरी का उपयोग। पहिया और धुरी सरल मशीन हैं जो कि पहियों और छड़ के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे वे एक साथ आगे बढ़ सकें। इस तरह आपके पास 2 पहिए हैं और 2 धुरी हैं, तो आप उन्हें संतुलित तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं जिससे कि वो भार उठा सकें। कार के पहिए पहिया और धुरी का एक उदाहरण है। रबड़ बैंड कार और एयर बैलून कार ऐसे खिलौने हैं जिन्हें आप पहिए और धुरी की 2 श्रेणियों का उपयोग करके बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 68। रबड़ बैंड कार। सामग्री। आपको कपड़े के क्लिप, पाइप स्ट्रॉ, चॉपस्टिक या टूथपिक्स, बोतल के ढक्कन, सेलोफेन टेप, कैंची, रबड़ बैंड और गोंद की आवश्यकता होगी। चरण 1, सबसे पहले कपड़े के क्लिप की लंबाई अनुरूप पाइप स्ट्रॉ को काटिए ताकि आप 2 क्लिप से थोड़ा दूर जोड़ सकें। चरण 2, 4 बोतल के ढक्कनों के ठीक बीच में छेद कीजिए और उन्हें कपड़े के क्लिप्स के लिए पहियों के रूप में इस्तेमाल है तो एक टूथपिक या लकड़ी की स्ट्रॉ से जोड़िए। इसे प्रत्येक छोर पर स्ट्रॉ के माध्यम से डालिए, एक ढक्कन से जोड़िए और फिर दूसरा ढक्कन जोड़िए। ढक्कन और टूथपिक या लकड़ी की स्ट्रॉ को चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग करना न भूलें। चरण 3, एक टूथपिक या चॉपस्टिक का छोटा सा टुकड़ा पहियों की श्रेणी के बीच में जोड़िए। आपको इसे स्ट्रॉ पर गोंद लगाकर चिपकाना होगा। ये कार के सामने वाले हिस्से जैसा प्रतीत होगा। दूसरी ओर स्ट्रॉ पर एक रबड़ बैंड लपेटिए। ये कार के पिछले हिस्से जैसा प्रतीत होगा। चरण 4, रबड़ बैंड के दूसरे छोर को कार के पीछे पहियों के बीच स्थित छोटे टुकड़े पर लपेटिए। चरण 5, कार के पीछे लगे रबड़ बैंड को कसकर लपेटिए और इसे स्थिर सतह पर छोड़ दीजिए। आपकी कार दौड़ के लिए तैयार है। चित्र 3.7, रबड़ बैंड कार बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें रबड़ बैंड कार बनाने के चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 69। एयर बैलून कार। हवा गुब्बारा कार। सामग्री। आपको लचीली स्ट्रॉ, एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल, पुरानी बोतल के ढक्कन, सिलोफेन टेप, एक रबड़ बैंड, चॉपस्टिक, बैलून और गोंद की आवश्यकता होगी। चरण 1, चित्र में समझाए अनुसार चॉपस्टिक को बोतल पर चिपकाइए। चरण 2, बोतल के ढक्कनों में छिद्र कीजिए और उन्हें चित्र में समझाए अनुसार चॉपस्टिक से जोड़ दीजिए। चॉपस्टिक के जोड़ को सुनिश्चित करने के लिए गोंद का उपयोग करना न भूलें। चरण 3, बैलून को रबड़ बैंड की सहायता से स्ट्रॉ के एक सिरे पर लगाइए। चरण 4, बोतल में एक छिद्र कीजिए और चित्र में समझाए अनुसार स्ट्रॉ डालिए। क्रियात्मक प्रारूप 1,
स्ट्रॉ के खुले सिरे से बैलून में हवा भरिए और फिर अपने अंगूठे से स्ट्रॉ को दबा दीजिए। इसे एक समतल सतह पर रखिए। क्रियात्मक प्रारूप दो, अपनी उंगली हटाइए। आपकी बैलून कार चलने के लिए तैयार है। चित्र 3.8, एयर बैलून कार बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें एयर बैलून कार बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 70। एक, अपने द्वारा बनाए गए खिलौने की तस्वीर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप अपने द्वारा बनाए गए खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। दो, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार आपके खिलौने का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। गतिविधि 5, खिलौने बनाने हेतु एक से अधिक सरल मशीनों का उपयोग। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें कई पंख होते हैं जो हवा चलने पर घूमते हैं। एक वास्तविक पवन चक्की कई भागों से मिलकर बनी होती है, लेकिन पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप इन मशीनों को एक साथ काम करने के लिए अन्य भागों के साथ साथ नोदक, प्रोपेलर और पहिया और धुरी जैसी सरल मशीनों के संयोजन का उपयोग कर बनाया जा सकता है। चित्र 3.9 में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर पवन चक्की बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 71। पवन चक्की। सामग्री, आपको कार्डबोर्ड के टुकड़े, चार्ट पेपर, स्ट्रॉ, गोंद और एक कटर की आवश्यकता होगी। चरण 1, चित्र में समझाए अनुसार एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाइए। बॉक्स के सिरों के मध्य में छिद्र कीजिए और स्ट्रॉ को इन छिद्रों के माध्यम से डालिए। साथ ही एक गोल कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी स्ट्रॉ के अंदर से आर पार कीजिए। चरण 2, स्ट्रॉ के दूसरे सिरे पर समान आकार का एक और गोल कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाइए। बॉक्स के बाहर कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर स्ट्रॉ का एक छोटा टुकड़ा चिपकाएं। चरण 3, चित्र में समझाए अनुसार चरण 2 को दूसरी ओर भी दोहराएं, लेकिन अब आपको स्ट्रॉ के सिरों पर गोलाकार कार्डबोर्ड के टुकड़े रखना होगा। चरण 4, समझाए अनुसार चार्ट पेपर से एक बेलना आकार बनाइए। स्ट्रॉ का एक छोटा टुकड़ा, कार्डबोर्ड के गोलाकार टुकड़े और चार्ट पेपर से कटी हुई पंखियों से एक पंखा बनाइए। चरण 5, चित्र में समझाए अनुसार टुकड़ों को एकत्रित कीजिए। अब आपकी क्रियात्मक पवन चक्की तैयार है। चित्र 3.9, पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप बनाने के क्रमबद्ध चरण। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें पवन चक्की का क्रियात्मक प्रारूप बनाने के क्रमबद्ध चरण समझाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 72। एक, पवन चक्की का एक रेखा चित्र बनाइए जिसमें विभिन्न हिस्सों के जुड़ने की सटीक माप दी गई हो। आप नीचे गए स्थान पर खिलौने की तस्वीर भी चिपका सकते हैं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप खिलौने की तस्वीर चिपका सकते हैं। दो, उनके लिए दिशा निर्देश लिखिए जो पहली बार पवन चक्की के क्रियात्मक प्रारूप का उपयोग कर रहे हैं। खाली स्थान। नए विचारों के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करना। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैट बॉट है जो एक कुशल बुद्धिमान सहायक है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करता है। रोचक वस्तुएं बनाने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करने पर नए विचार के लिए चैट जीपीटी से पूछिए। आप इसके द्वारा प्रदत्त परिणाम देखकर अचंभित हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 73। गतिविधि 6, साइकिल में उपयोग होने वाली सरल मशीनें। अब तक आपने सरल मशीनों के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। अब आप ये जानेंगे कि बड़ी मशीन बनाने के लिए सरल मशीनों का उपयोग कैसे किया जाता है।
एक साइकिल विभिन्न सरल मशीनों का उपयोग करके बनाई जाती है, जैसे पहिया, पहिए और धुरी, लीवर एवं घिरनी। चित्र 3.10 का अध्ययन कीजिए। इस गतिविधि में आप सीखेंगे कि साइकिल के भागों को कैसे क्रियात्मक रूप में बनाए रखेंगे। साइकिलों में कई चलित भाग होते हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तालिका 3.10

जाते हैं। यहाँ साइकिल का एक चित्र दिया गया है। उत्तोलक, लीवर, पहिया, व्हील, दांता, स्प्रॉकेट, पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। चित्र 3.10, साइकिल के भाग। तालिका 3.2, साइकिल के भाग और उनके कार्य। भाग, कार्य, ब्रेक पैड, इन्हें पहियों के चारों ओर रखा जाता है और ये पहियों पर पकड़ बना लेते हैं ताकि उनकी गति को रोका जा सके। ब्रेक, ये साइकिल को धीमा करते हैं या रोकते हैं। ब्रेक के प्रकारों में रिम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक प्रचलित हैं। चेन, ये ऊर्जा को पिछले पहिए में स्थानांतरित करती है। पृष्ठ संख्या 74, चेन रिंग्स स्प्रोकेट, ये चेन का मार्गदर्शन करते हैं और पैडल से चेन तक ऊर्जा संचारित करते हैं। फ्रेम, ये मुख्य संरचना है जो चालक को सहारा देती है और सभी भागों को जोड़ती है। हैंडल बार, ये साइकिल को पकड़ने और चलाने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। हब्स, ये पहिए का मध्य भाग है। ये पहिए को धुरी के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। किक स्टैंड, ये साइकिल को सीधा खड़ा होने में सक्षम बनाता है। साइकिल लाइट, ये दृश्य क्षमता और सुरक्षा मानकों को सुगम करती है। पैडल, ये चालक के पैरों पर बल लगाने के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। रिम, ये टायर को सहारा देते हैं एवं ब्रेक लगाने के लिए सतह प्रदान करते हैं। सैडल, इस पर चालक बैठता है। सीट पोस्ट, ये सैडल को फ्रेम से जोड़ता है। आमतौर पर इसकी ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है। स्पोक्स, ये रिम को हब से जोड़ते हैं और मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं। टायर, ये कर्षण और कुशनिंग प्रदान करते हैं। साइकिल से संबंधित कुछ सामान्य समस्याएं और समाधान इस प्रकार हैं। एक, साइकिल के भागों में जंग लगना। आप साइकिल के भागों को रेगमाल, सैंडपेपर से साफ कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार तेल या पेंट लगा सकते हैं। दो, ढीले हिस्से। आप उचित उपकरणों का उपयोग कर ढीले भागों को कस सकते हैं। अपने शिक्षक से इन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में पूछिए और उन्हें नीचे उल्लेखित कीजिए। खाली स्थान। तीन, पहिए स्वतंत्र रूप से नहीं घूम रहे हों। चलने वाले भागों पर तेल लगाने से सहायता मिलेगी। पृष्ठ संख्या 75। चार, सपाट टायर। टायरों में हवा के दबाव को नियमित रूप से जांचना चाहिए। आइए अब साइकिल के प्रत्येक भाग का सूक्ष्मता से अध्ययन करें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, साइकिल विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों से बनी है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुचारू रूप से चलती रहे, आपको इसके भागों की जांच और रखरखाव की आवश्यकता है। चित्र 3.11। यदि आवश्यक हो तो आप साइकिल मरम्मत वाली दुकान के विशेषज्ञों से सहायता ले सकते हैं। अपने साथियों और शिक्षक की सहायता से तालिका 3.3 भरिए। चित्र 3.11, साइकिल को क्रियात्मक स्थिति में बनाए रखने के लिए कार्य आयोजन करना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक अपनी माँ की सहायता से साइकिल का रखरखाव कर रहा है। तालिका 3.3, साइकिल के भागों की मरम्मत। साइकिल के भाग, साइकिल के भाग का कार्य। क्या साइकिल के भाग ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ, नहीं। क्या आपने उस भाग की मरम्मत के लिए कुछ किया? हाँ, नहीं। ब्रेक, खाली स्थान। चेन, खाली स्थान। स्पोक्स, खाली स्थान। किक स्टैंड, खाली स्थान। हैंडल बार, खाली स्थान। टायर, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 6।
76 गतिविधि 7 साइकिल मरम्मत की दुकान पर जाएं। आपको विशेषज्ञों से सीखने के लिए एक साइकिल मरम्मत की दुकान पर जाना चाहिए। आप साइकिल के रखरखाव और उसमें सुधार के विषय में सब कुछ सीखने के लिए अपने शिक्षक से साइकिल मैकेनिक मिस्त्री को विद्यालय में आमंत्रित करने का भी अनुरोध कर सकते हैं। कुछ प्रश्न जो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं वे हैं, 1. क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसकी साइकिल चलने से पहले नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए? खाली स्थान। 2. क्या सैडल की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? खाली स्थान। 3. साइकिल साफ करने का सबसे उचित तरीका क्या है? खाली स्थान। 4. आप कैसे पहचानेंगे कि टायरों में हवा भरने की आवश्यकता है? 5. पंक्चर टायर को कैसे ठीक किया जाता है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 77। 6. साइकिल की चेन में कितनी बार तेल डालना चाहिए? 7. साइकिल के चरमराते ब्रेक को कैसे ठीक किया जा सकता है? खाली स्थान। 8. साइकिल के पहिए को संरेखण अलाइनमेंट में कैसे लाया जाएगा? खाली स्थान। गतिविधि 8. खिलौने की एक प्रदर्शनी आयोजित कीजिए। विद्यालय में आपके और आपके साथियों द्वारा बनाए गए खिलौनों की प्रदर्शनी की योजना बनाना सभी विद्यार्थियों और आगंतुकों के लिए रोचक और समृद्ध अनुभव हो सकता है। प्रदर्शनी की योजना बनाने और व्यवस्थित करने के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। किसी कार्यक्रम को आयोजित करने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। 1. प्रदर्शनी का उद्देश्य परिभाषित कीजिए। क्या ये खिलौनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रचनात्मकता का प्रदर्शन करने या अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर खिलौने बनाने का तरीका सिखाने के लिए है? उदाहरण के लिए, प्रदर्शनी के दौरान आप खिलौने बनाने या साइकिल का सुधार कार्य करने का कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 78। 2. प्रदर्शनी के लिए एक विषय तय कीजिए, जैसे पर्यावरण अनुकूल खिलौने, ऐतिहासिक खिलौने एवं भविष्य के खिलौने। 3. सुनिश्चित कीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए खिलौने चुने गए विषय के अनुरूप हों। 4. विद्यालय परिसर में प्रदर्शनी स्थान का चयन कीजिए। 5. ये सुनिश्चित करते हुए प्रदर्शनी के लेआउट की योजना बनाइए कि आगंतुकों के घूमने के लिए वहां पर्याप्त स्थान हो। आकर्षक वातावरण बनाने के लिए आयोजन स्थल को विषय के अनुरूप सजाइए। 6. माता पिता, स्थानीय कलाकारों और समुदाय के सदस्यों को आमंत्रण भेजिए। 7. खिलौनों को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि वो आकर्षक लगें। सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक पर निर्माता के नाम और संक्षिप्त विवरण के साथ एक सूचक पत्र लेबल चिह्नित हों। सुनिश्चित कीजिए कि सभी खिलौनों का उपयोग करना बच्चों के लिए सुरक्षित है। 8. आगंतुकों की सहायता करने और किसी भी समस्या का प्रबंधन करने के लिए स्वयंसेवकों वॉलंटियर को प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के लिए कहिए। 9. ये समझने के लिए कि क्या अच्छा किया और क्या सुधार किया जा सकता है, आगंतुकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि और शिक्षकों से प्रतिपुष्टि फीडबैक एकत्रित कीजिए। 10. घटना का दस्तावेजीकरण करने के लिए चित्र और वीडियो लीजिए और मुख्य अंशों को विद्यालय के समाचार पत्र, न्यूज़लेटर या वेबसाइट के माध्यम से

0: मैंने दूसरों से क्या सीखा? एक, किन्हीं तीन बातों के विषय में बताइए जो आपने खिलौने या क्रियात्मक प्रारूप बनाते समय अपने मित्र से सीखी हों। खाली स्थान। दो, साइकिल मैकेनिक मिस्त्री से सीखी गई किन्हीं तीन बातों का उल्लेख कीजिए। खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 79। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? आपने विचारों को क्रियाओं में परिवर्तित कर दिया है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया, इसका अनुमान लगाइए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तक में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त गतिविधियां की हैं, तो कृपया संख्या और समय जोड़िए। यहाँ एक समय रेखा दी गई है जिसमें गतिविधि और समयावधि कालांश के विवरण को अंकित करने के लिए स्थान दिया गया है। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। अनुपयोगी वस्तुओं से बनी विभिन्न प्रकार की सरल मशीनों का उपयोग करके एक श्रृंखला प्रतिक्रिया यंत्र चेन रिएक्शन मशीन बनाइए। नए विचारों के लिए आप इंटरनेट पर निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। सरल मशीन जमा श्रृंखला प्रतिक्रिया खिलौना चेन रिएक्शन टॉय। सोचिए और जवाब दीजिए। एक, आपको क्या करने में आनंद आया? दो, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तीन, आप क्या अलग करना चाहेंगे? चार, एक खिलौना डिजाइन कीजिए जिसका उपयोग आप किसी सहकर्मी को गणित या विज्ञान से संबंधित अवधारणा को समझने में सहायता करने के लिए कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 80। पांच, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी तय करते समय पहिया कितनी बार घूमेगा? संकेत, आप साइकिल के टायर के रिम की परिधि सर्कमफेरेंस का उपयोग कर सकते हैं या साइकिल के टायर की गति का अवलोकन कर सकते हैं। 6, क्या साइकिल के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई परिवर्तन होता है? यदि हाँ तो कैसे? 7, परियोजना से संबंधित अन्य कौन से कार्य हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बातचीत कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा अभी किए गए कार्य से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण साइकिल मैकेनिक खिलौना निर्माता और अभियंता इंजीनियर आदि हैं। इसके साथ ही भाग 2 परियोजना 3 समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर मुइनुल हुसैन। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम पे मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शार

0: धोखा दे देते हैं। बताइए।
1: देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: नमस्कार, शारदा लॉन्चपैड और सुनो शारदा शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी हमारे पिछले एपिसोड में स्टार्टअप चर्चा में देखा है कि हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग थीम पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योरशिप में और युवाओं के लिए अभी क्या नई दिशाएं आ रही हैं। उसी सीक्वेंस में हमारे पास आज हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं, श्री बीएल गौर जी जो फाउंडर चेयरमैन है गौर सन्स के। कोई भी मोहताज नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन के, और यदि भारत रत्न की तरह मैं इन्हें यूपी रत्न बोलूं तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे सब लोग आपके इतने जानने वाले, आपके नजदीक के लोग हम जानते हैं, तो मैं अभी आप इजाजत चाहूंगा कि आपको बाबूजी के नाम से बुलाऊं।
2: थैंक यू,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा के स्टूडियो में और शारदा लॉन्च पर शारदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। तो हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपके बारे में पहले हमारे श्रोताओं के लिए चाहूंगा आप बताएं कि अभी आजकल आप किन गतिविधियों में हैं और इतना बड़ा जैसे एम्पायर आप संभाल रहे हैं तो उसके साथ कैसे आपका समय व्यतीत होता है?
2: जहाँ तक निर्माण की बात है, कंस्ट्रक्शन की बात है, तो वो मैंने 5 साल से छोड़ दिया है। मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ और आज भी बच्चे मुझे चेयरमैन ही मानते हैं। कोई सलाह लेनी होती है तो ठीक है, अदरवाइज 6-7 कंपनी है गॉड्स ग्रुप के अंदर, मैं कोई ज़्यादा इंटरफेयर मेरा नहीं रहता। तो मेरा अपना कार्य जो है वो केवल लिखने का है। अब तक 16 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें मीडिया भी है और इंजीनियरिंग है और हमारी कविताएँ और गद्य और पद्य दोनों है। तो मेरा काम आजकल केवल लेखन का है, अभी 2-3 किताबें और आने वाली हैं।
1: आपके जो इतना एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है उसमें अगर जब वो किताबों की फॉर्म में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद बहुत ही लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग आपको सुन नहीं पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, तो शायद वो सारी की सारी जानकारी और सारे विचार उन तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है इससे अच्छा माध्यम तो क्या हो सकता है किताबों के थ्रू, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएं। तो उसके आगे मैं थोड़ा सा जैसे जो मैं आपके बारे में मैंने पढ़ा है और जाना है कि आप पहले भारत सरकार भारतीय रेल में रहे हैं बहुत वर्षों तक, और उसके बाद फिर वहां से आपने अपना ये सब अपना काम करने का सोचा। तो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे जो युवा हैं या बहुत सारे लोग हैं, एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन रहता है कि हमें सरकारी नौकरी किसी तरह से मिल जाए, और आप एक अच्छे पद पर पहुंचने के बाद फिर आपने उसको छोड़ के अपना काम करने का सोचा, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए उसके पीछे क्या प्रेरणा रही और किस तरह से आपने शुरू किया ताकि बाकी लोगों को उससे कुछ और प्रेरणा और जानकारी मिले।
2: मैं समझता हूँ मेरी बात से आज के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि आज हम जगह जगह मीडिया में भी देखते हैं, हर चैनल पर देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला, हमें तो नौकरी चाहिए। अब किसी युवा से अगर आप पूछें कौन सी नौकरी चाहिए, आप गवर्नमेंट में करोगे कि नहीं नहीं तो प्राइवेट है
1: जी,
2: तो वो कहेगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। आप इमेजिन करिए गवर्नमेंट कितनी नौकरियां क्रिएट कर सकती है, किस विभाग में कितने आदमियों की जरूरत है। तो नौकरी की बात जो सोचते हैं, मेरे दिमाग मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग थोड़ा सा हिम्मत ही नहीं होते, अन्यथा नौकरी की क्या बात है। नौकरी आप क्रिएट करो ना कि लोग आपके पास आए नौकरी करने के लिए। मेरे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ कि कोई भी आदमी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं हरियाणा में गया एक गांव में, तो वहाँ एक महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 बीघे जमीन, 3 बच्चे, अब वो भूखे मरने की नौबत। तो किसी आदमी ने, आप जैसे व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम बी जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके 2 बक्से ले आओ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहे पैसे मैं देता हूँ। आज उसके पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। वो किसानों की जाके हाथ जोड़ती है कि मेरे 2 बक्से अपने खेत के पास रखवा दो, और उसके बाद वो 10 आदमी उस शहद को कलेक्ट करते हैं। अब वो एक्सपोर्ट की बात सोच रही है वो महिला जो है। ये है रोजगार की बात, सोचो तो सही है कुछ। आज आप बेरोजगार हैं, क्यों बेरोजगार हैं, कुछ करिए ना। मोदी जी की बात को आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कभी एक बात कह दी किसी अपने लेक्चर में कि भाई कुछ ना हो तो पकौड़े तलिए। आज कितने पकौड़े वाले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, आपने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं। तो विचार जो है ना, आज के युवा को चाहिए विचार, पहले विचार तो क्रिएट करिए। जो विचार आता है वो भी एक हवा की तरह आता है, आपको कैच करना है उस विचार को। जैसे मेरी तो यहाँ इंजीनियरिंग में होता ही है कि सबसे पहले विचार आता है, विचार को फिर हम ऐसी रफ लाइन पर बनाते हैं, फिर उसका नक्शा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें काम शुरू करना है। मैंने अपने जीवन में काम शुरू किया तो न उस समय पूंजी थी, न श्रम था, केवल दिमाग था। कोई सहारा नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बैंक कोई लोन देता नहीं था। एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस जो आज 28 साल के अंदर चल करके यहाँ पर खड़ा है, जिसमें आज लाखों लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। और कितनी ही कंपनियां हैं, 216 कंपनी हमसे जुड़ती हैं जो हम निर्माण करते हैं। आज भी मेरी कंपनी के अंदर मैं समझता हूँ करीब 2600 आदमियों का स्टाफ है, और जिसमें 500 आदमी केवल स्टाफ वो है जो सबको करता है, बाकी फील्ड में है और ईश्वर है वो चलाता है सब काम। चलते
1: बहुत अच्छा आपने बोला। और जो स्वरोजगार योजना हम देख रहे हैं इतनी सारी आ रही हैं और इतने अभी आज के टाइम में सुविधाएं उपलब्ध हैं और जानकारी देने के लिए लोग हैं, मदद करने के लिए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और प्रधानमंत्री की अपनी रोजगार योजना है, कौशल विकास योजनाएं हैं। तो अगर इन सब से प्रेरणा लेकर और इन सबका मदद से अगर अपना काम शुरू करें तो शायद स्वरोजगार से आगे जो लोग नहीं भी अपना स्वरोजगार कर पा रहे हैं तो उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं नौकरी निकल आएगी। तो बहुत अच्छा आपने तरीका बताया।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं कर दी है कि जो आदमी छोटी सी खोखा भी लगाता है उसको भी लोन मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पहले कहाँ मिलता था? पहले तो हमें लोन नहीं मिलता था। जब मैंने काम शुरू किया 90 में तो हमें लोन के लिए हाथ जोड़ने पड़ते थे बैंकों में। आज ये है कि मेरी तो खैर कुछ ईश्वर मालिक है कि बैंक हमें फोन करते हैं कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको हम फाइनेंस करेंगे। उनकी ये हालत, क्योंकि जीवन में अगर आप ईमानदारी से किसी बात काम को करते हैं या सोचते हैं तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। आप आगे तो बढ़े, कुछ करें तो सही।
1: जरूर, वो पहला कदम लेना वो बहुत जरूरी है कि विचार अच्छा आया और फिर हाँ उसके ऊपर काम करना है और लगन से जुड़ जाए उसके पीछे तो जरूर होगा।
2: और मंजिल की तो हम बात सोचते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमें उस मंजिल पर जाना है। जब पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे?
1: हम ये सोचते रहेंगे कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, चलना शुरू करेंगे तो अपने आप पहुंचेंगे। बिना चले तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया। और हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: सुनो शारदा में फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का। और तो हमारे साथ श्री बीएल गौर जी आज हमारे अतिथि के रूप में हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपना, एक जमाने में जब कोई मदद किसी तरह की उपलब्ध नहीं थी, कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी से बाहर आकर अपना कार्य शुरू किया और आज ये पूरा, जिसको मैं एक एम्पायर बोलते हैं, रियल एस्टेट में एक जाना माना बड़ा नाम है वो बनाया इन्होंने। बाबू जी थोड़ा सा हम आपकी फील्ड जो सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है इंजीनियरिंग में, हमने देखा कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जरूर है, प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या नया सोचें, क्या करेंगे?
1: कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो आज देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें हैं, अस्पताल है, इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। आज देश के अंदर करीब करीब 16,000 बड़े बिल्डर हैं हमारे इस लेवल के। और आप देखिए कि अगर हम आज 7 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हमारे जैसे और लोग हैं उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। ये तो हुआ बिल्डिंग निर्माण की बात। आप हाईवेज में आ जाइए, गडकरी के अंदर आज मैं सोचता हूँ कि देश में जो सड़कें बनी हैं, तमाम फॉरेन की सड़कें भी उसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर रही। इवन हम अपनी छोटी सी बात बताते हैं, गौड़ सिटी सेंटर, जहाँ गौड़ सिटी है, उसके सामने 430 फुट की रोड है, 430 फुट की रोड इवन किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेंगी। इस तरह का डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर बड़ी चीज़ें आ गई हैं। पहले शटरिंग लगती थी, बल्ली लगाते थे, ये करते थे, फिर उसको 15 दिन के बाद खोलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। अब मायोबैन शटरिंग आ गई है, तो अभी हम यहाँ नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से केमिकल्स आ गए हैं कि हम बजाय 15 दिन के 7 दिन में छत खोल देते हैं, तो 7 डेज का वो टाइम बचता है। आजकल जो बिल्डिंगें हमारी बन रही हैं, हम कोई प्लास्टर नहीं करते, ना इनसाइड ना आउटसाइड, केवल फिनिशिंग होती है, वो डायरेक्ट। पहले पेंट होता था, प्लास्टर होता था, वो सब चीज़ें हट गई हैं। आज ग्रीन बिल्डिंग आ गई हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का पैनल्स लगाए जाएं और उनको रोशनी जो है, उनकी जो बिजली है, वो हम सूर्य से प्राप्त करें। और दूसरी चीज़ें अभी जो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूँ, तो आज कितने आप देखते होंगे, अगर गाजीपुर की तरफ दिल्ली जाते हैं तो पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। हमारी किसी बिल्डिंग में आपको जीरो वेस्ट है। तो सबसे पहले ये गौड़संस ने शुरू किया बेंगलोर से मशीन ला करके, तो हर फ्लैट से हमारा कूड़ा जो है, पहले तो हम एक और सिस्टम करते थे कि हॉपर्स लगे हुए थे बड़े बड़े, जैसी चिमनियाँ होती हैं ना उस टाइप की, हर फ्लैट में, तो कूड़ा जो है उसमें डाल देते हैं। तो रहने वालों ने क्या वो गलती की कि उसमें कपड़ा भी डाल रहे हैं, उसमें ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो गया। अभी क्या है, हर फ्लैट के अंदर 2 ग्रीन और रेड वो बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर एक टीम जाती है, वो उनको इकट्ठा करके नीचे भेज देते हैं, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से आ जाते हैं नीचे। नीचे एक मशीन रखी हुई है, तो जो किचन वेस्ट है वो उसमें डाल देंगे, और जो अलग चीज़ें हैं, प्लाईवुड है, शीशा है, वो अलग डाल देंगे। शाम को एक टीम आएगी जिसमें करीब 10-12 आदमी होंगे, तो ग्रीन वेस्ट वाले जो किचन वेस्ट है उसको वो हॉपर में डालेंगे और 2 घंटे में खाद तैयार हो जाएगी, तो खाद बोरियों में भर के वो चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और जो दूसरे हैं वो ट्रक में भर के ले जाएंगे रिसाइकल के लिए। तो देयर इज नो वेस्ट, नो कूड़ा, कोई है ही नहीं अपने किसी बिल्डिंग में, नथिंग। ये एक नई चीज़ है।
0: तो बहुत बड़ी समस्या हमने देखा है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि अगर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल जाए, ड्राई और वेट अलग अलग मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक समस्या बनी हुई है।
1: जी,
0: सरकार ने भी, मैंने पीछे कुछ पढ़ा था कि बहुत इसके ऊपर नियम लगाए बनाए हैं, ये सब आपको अलग अलग करना है, डालना है, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपकी सारी सोसाइटीज में अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है,
1: सोसाइटीज में,
0: तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती होगी।
1: बिल्कुल, काफी बड़े प्रॉब्लम।
0: 2 घंटे के अंदर वो खाद बनाना, ये भी बहुत आधुनिक तकनीक है,
1: खाद बन के बाहर तैयार हो जाती है, उसको बोरियों में भर लिया जाता है, फिर हम जो ओपन एरिया छोड़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। यह अतुल्यम में रहती है मैडम, जो इनसे पूछेगा, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसमें घास लगी हुई, पेड़ लगे हुए हैं, तो वो हमारा खाद वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। उसी तरह से जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हर बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा है, सारा वेस्ट पानी वहाँ आता है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है, उससे वही पानी निकल करके कई बार तो इतना नीट होता है कि हम वॉशिंग के लिए उसके लिए यूज करते हैं, नहीं तो अपने पार्क में यूज करते हैं,
0: हॉर्टिकल्चर में वही पार्क इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा है, इतना बड़ा ही फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ही लोग हैं। पहले सोचा जाता था कि आपको दीवारें बनानी है, खड़ा करना है, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट में इतने फील्ड आ गए हैं, ऑटोमेशन भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये इस फील्ड में रोजगार से रिलेटेड तो कोई इशू किसी को आना नहीं चाहिए अगर कोई इसमें काम करे और सीखे।
1: कोई इशू नहीं आता। अभी जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ वो किसी भी बड़े बिल्डर के यहाँ जाए, बताएं जी कि मेरे पास लेबर है, मैं टाइल्स लगा सकता हूँ। He can take job, start

0: मैंने तो इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, आपको मैंने बताया कि करीब 17 इंस्टीट्यूट में मेरी नीम से नाली तक पढ़ाई जा रही है। करीब 100 आदमी तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं, उनका स्टार्टिंग 10-12 हजार रुपए से, 10वीं पास, ओनली 10th पास। अभी जो मैंने रिसेंटली लिखी है कैसे बने विश्वकर्मा, वो 35 मंजिल के लिए लिखी है। मैं तो चाहता हूँ जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, मैं अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूँ, उनका कोर्स तैयार हम करा देंगे, अपने यहाँ पढ़ाना शुरू कर, वहाँ से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर निकलेंगे और हमें जितनी इंजीनियर की जरूरत नहीं है उससे 3 गुना हमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जरूरत, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर निर्माण के अंदर कितने काम होते हैं। सेफ्टी टैंक का काम मैंने आपको बताया, वाटर ट्रीटमेंट का बताया, खाद का बताया, कंस्ट्रक्शन कितने फील्ड हैं, टाइल्स लगनी है, फ्लोर में पत्थर लगना है, डिस्टेम्पर होना है, कंक्रीट का सुपरविजन है, हर एक जगह सुपरवाइजर थे। आज अगर क्वालिफाइड लोग मिले तो एक एक इंडस्ट्री जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है।
1: जो इंडस्ट्री अकेडमी का बहुत सुनते हैं, जगह जगह पर इस बारे में बात होती है, इंडस्ट्री और अकेडमी को साथ में आना चाहिए, तो मुझे लगता है आपने तो उसके बारे में बहुत क्लियरली बता ही दिया है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि लोग जो इंडस्ट्री वहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही आकर बच्चों को बताएं, और आपने सालों साल ये काम किया है तो आपकी लिखी हुई किताब से अच्छी जानकारी तो कहाँ से मिलेगी।
0: वीसी साहब या कोई लोग चाहेंगे तो मैं 5-7-8-10 किताबें भेज सकता हूँ, जो कैसे बने विश्वकर्मा उसकी स्टडी करके आप चाहें तो, और मेरी फ्री गाइडेंस रहेगी जब भी आप चाहें।
1: बहुत अच्छा आपने बताया, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: फिर से स्वागत है सुनो शारदा के श्रोताओं का। और आज हम श्री बी एल गौड़ जी से बातचीत कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए रोज़गार किस तरह से हो सकते हैं, क्या बच्चों को सीखना चाहिए। बाबू जी, एक चीज़ हमने इंजीनियरिंग की और कंस्ट्रक्शन की तो बहुत बात की, लेकिन अभी जैसे आपने भी बताया कि साहित्य की तरफ अभी आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा हुआ, कई किताबें आपने लिखी हैं, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताइए कि अभी आपकी नई किताब कौन सी आई है और आप किस दिशा में आगे लिख रहे हैं।
1: नई किताब तो मेरी बीता सो अनबीता, मेरी आत्मकथा है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो बीत कर भी नहीं बीतते। ये आप तो युवा हैं, सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आए होंगे कि वो दिन बीत गए लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो मेरी किताब का शीर्षक है बीता सो अनबीता है, ब्रैकेट में आत्मकथा। उसमें मैंने कैसे अपना जीरो से काम शुरू किया, क्या हुआ, कविता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो एक बड़ा एक शेर है किसी का कि

0: शायर बनने के लिए तो दिल में अगर कोई फीलिंग होगी मानवता के लिए, किसी के लिए कोई दर्द होगा, मोहब्बत होगी, तभी आप शायर बन पाएंगे, कवि बन पाएंगे। तो वो मन से रिलेटेड बात है, दिमाग से रिलेटेड बात नहीं
1: जी।
0: और मैंने बल्कि आज के युवाओं के लिए मैं कुछ दो शब्द कह भी सकता हूँ कि जो मन है, ये मन ही हमसे सब कुछ कराता है। जहाँ साहित्य की बात, तो मन से ताजमहल बनते हैं। मैं अगर चाहें तो आप, मैं दो चार लाइनें सुना।
1: जी जरूर जरूर बिल्कुल।
0: कहता है कि मन से ताजमहल बनते हैं, मन को कभी न थकने देना, मन थक गया तो आप थक गए। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं और मन से निर्मित होते मंदिर मन से ताजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन के भाव बनाते मस्जिद मन से गुरुद्वारे बनते हैं और मन के जब हिमखंड गले तो गलकर गंगा जल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, यदि मन पा जाए मन भावन हर पल स्वप्न महल बनते हैं। और मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं और मन से निर्मित होते मंदिर मन से ताजमहल बनते हैं। मन का मीत अगर मिल जाए, मन का मीत अगर मिल जाए, निज सपनों में आए जाए, तब अंतस के प्रेम कुंड में सपने नील कमल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन हारे तो हारे जीवन, मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन, और चाहत मन की बनी रहे तो दोहे गीत गजल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनता है। तन चाहे जर्जर हो जाए, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, तन चाहे जर्जर हो जाए, मन में पीड़ा भर भर जाए, लेकिन अंतिम सत्य यही है, लेकिन अंतिम सत्य यही है, जीवन रथ मन से चलते हैं। और मन को कभी न थकने देना, मन से
1: बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान शरीर से चाहे कैसे भी थक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मन मजबूत है, उसमें नए विचार आ रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते
0: देख रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: मेरी खुराक मन है, मेरे विचार जो है, मेरा साहित्य वो जीवन है, वो जीवित रखता है मेरे को, कंक्रीट जीवित नहीं रखती है।
1: शायद आज भी किसी भी युवा से ज्यादा ही आप बिल्कुल योगदान है, आज के डेट में भी है। तो बहुत अच्छा रहा, अगर हमारे पास ये ऑडियंस होती तो मुझे लगता है बहुत देर तक तालियां बजती रहती आपके इसके ऊपर। लेकिन जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो तो जरूर इससे बहुत प्रभावित होकर और कुछ ना कुछ नया करेंगे, और यही हमारी कोशिश रहती है इस तरह के कार्यक्रम से, बातचीत से, कि किसी को भी परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है। बहुत लोग आते हैं, हमें ये मदद नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा, पर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है शिकायतें और परेशानियां तो जिंदगी में आती रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो उससे बाहर निकल कर, उससे आगे बढ़ के और उससे लड़के किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ ना कुछ नया करते रहने की कोशिश करते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में कार्य करेंगे तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ अच्छा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ समय बिताने का और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं सुनो शारदा, शारदा लॉन्च पैड और शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम बहुत जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे और नई इस बारे में जानकारी देंगे।
0: धन्यवाद।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अरे सुनीता, कैसे बामुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
0: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करे, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नर...

0: चीता बेटा।
1: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सब ने देखा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
1: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: दोनों को ही चाहतो न चाहतो से मारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा इशारा।
1: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर एंटरटेनमेंट की भूख

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में

विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You're listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: करवे।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
3: मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो तुम।
4: धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूँगा।
5: इशिता, I'm sorry, लेकिन भाई से बढ़के कुछ नहीं।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था, और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
5: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
4: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
5: ओ मुझे बुखार हो गया है। पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
4: नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
5: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।

0: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या तीन तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
1: तीन तारा।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.
3: Song credits, singers Neha Kakkar, Romy, Arun and Ika, recreated Tanishq Bagchi, lyrics Shabbir Ahmed, only on Tips Official. So let's enjoy it, only on Surushada 90.8 FM.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
4: 90.8 एफएम। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.
8: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
7: गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर, थिंकर, लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM. सो लेट्स एंजॉय इट।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझो। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
3: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
2: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
3: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
2: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जांच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।